मुख वेद पाठ असंख जोग मन रहे उदास, असंख भगत गुण ज्ञान विचार, असंख सती असंख दातार, असंख सूर मोह पक्षार, असंख मोन लिवलाय तार, कुदरत कौन कहावी।

मूर्ख अंधगोर असंख चोर हराम खोर असंख अमर कर जाए जोर असंख गलवड हत्या कमाए असंख पापी पाप कर जाए असंख कूड़े यार कूड़े फिराए असंख मलेच मल भक खाए असंख निंदक सिर करे भार नानक नीच कहे विचार वारिया न जावा एक वार जो तुद भावे साई बलिकार तू सदा सलामत निरंकार असंख नाव असंख थाव अगम अगम असंख लो असंख कहे सिर भार होए।

तेरे भगत रसाले। होर केते गावन से मैं चितनावन, नानक क्या विचारे। सोई सोई सदा सच साहिब, साचा साची नाई है भी होश।

अनाद अनाहत जुग जुग एकोवेश। आसन लोय लोय भंडार जो कुछ पाया सो एका वार, कर कर वेखै सृजनहार नानक सच्चे की साची कार। आदेश तिसै आदेश आद अनिल अनाद अनाहत जुग जुग एकोवेश। एक दूजी बोल लख होवै लख होवै लखवीश लख।

जोर जोर ना जीवन मरण न जोर जोर ना राजमाल मंसोर जोर ना सुरती ज्ञान विचार जोर ना जुगती छुटे संसार जिस हाथ जोर कर वेखे सोए नानक उत्तम नीच ना कोए राती रुती छित्ती वार पवन पानी अग्नि पाताल तिस विच धरती थाप रखी धर्मसाल तिस विच जी जुगत के रंग तिनके नाम अनेक अनंत करमी करमी होए विचार सच्चा आप सच्चा दरबार तिथे सोहन पंच परवान नदरी कर्म पवे निशान कच पका।

0: लोग देख रहे हैं?
1: उसका दिल भी डर जाता।
0: जाओ ना, मुझे शर्म आती है।
1: मैं तो

0: Visit starters.co.uk or call
1: 0208-900-2323.
2: History divided a nation, but could never divide humanity.
3: कौन सी आजादी और किसका मुल्क?
2: Witness the epic reunion of Sunny Deol and Rajkumar Santoshi in Batwara 1947.
4: वो माँ है माँ, माँ को हिंदू मुसलमान में ना बांटिए.
2: Starring Shabana Azmi, Priti Zinta, Karan Deol and Ali Fazal.
4: और बच्चे के मुंह से निकला पहला लफ्ज माँ है.
2: Produced by Aamir Khan. Experience the untold story of courage and hope. Batwara 1947. Now in cinemas.

0: जिंदगी।
1: लिसन टू लाइका गोल टू गोल टू ऑन लाइका रेडियो मोबाइल ऐप लाइका रेडियो डॉट कॉम एंड एलेक्सा प्ले लाइका गोल टू गोल टू।
2: When you go abroad, everyone knows the best way to make yourself understood is to say everything in English, but louder.
3: Four beers, please, garçon!
2: Just like when you amplify your advertising with radio. 40 million listeners every week get the message. See radio differently at radiocentre.org.
4: भोजपुरी बवाल।
5: पवन जी, मैंने सुना है आप दोनों के रिलेशंस अच्छे नहीं हैं।
6: आप सीधे सीधे आरोप लगा रही हो।
7: कहां से ही झगड़ा चला था भाई।
4: द ब्रांड न्यू रियलिटी टीवी शो भोजपुरी बवाल, मंडे टू संडे एट 10 PM ऑन कलर्स टीवी।
1: Miss your favorite show on Leica Radio Midlands? You can now listen back at leicaradio.com. It could be Breakfast with Kajal, Drive with Raj Badden, the legendary presenters Ravi Sharma, Bali Brambat, or the energetic Radio Wally. Listen back wherever you are by logging on to leicaradio.com and the Leica Radio mobile app, available in all iOS and Android stores. Download the app for free and listen to Leica Radio Midlands when you want.
8: बहुत पढ़ाई किया है ना तूने, तो एक सवाल का जवाब दे।
9: पूछ ही लो सर।
8: साल के कितने महीने में 28 दिन होते हैं?
9: फरवरी सर।
10: सर, साल के हर महीने में 28 दिन होते हैं।
4: इंडिया के टॉप 1% स्टार्ट्स दिस सितंबर ऑन स्टार प्लस।
8: इंडिया के टॉप 1% सिर्फ डिग्री नहीं दिमाग भी जीतेगा।
1: बैक टू बैक हिट्स अक्रॉस द लाइका रेडियो नेटवर्क।

0: Shah Basmati Rice. Available now at all Falcon stores, Worli Superstore, Opus and all independent stores nationwide.
1: साउथ हॉल ट्रेवल की एक और ऊंची उड़ान देखिए दुबई की शान फ्लाइट होटल साइट सींग डेजर्ट सफारी यानी दुबई में सारा इंतजाम और पैकेज की प्राइस बेहद कम। साउथ हॉल ट्रेवल का दावा है कि 24 घंटे के भीतर कहीं से कम में ला के दिखाएं तो ये रिफंड या डिफरेंस वापस कर देंगे। तो दुबई के लिए तैयार, यू डू द पैकिंग, दे डू द प्लानिंग। कॉल साउथ हॉल ट्रेवल ऑन 020-8574-8410। दैट्स 8574-8410।
2: साउथ हॉल ट्रेवल or protected.
3: History divided a nation but could never divide humanity.
4: Kaun si azadi aur kiska mulk?
3: Witness the epic reunion of Sunny Deol and Rajkumar Santoshi in Batwara 1947.
5: Wo maa hai maa! Maa ko Hindu Musalman mein na baatiye.
3: Starring Shabana Azmi, Priti Zinta, Karan Deol and Ali Fazal.
5: Har bachche ke muh se nikla pehla lafz maa hai.
3: Produced by Aamir Khan. Experience the untold story of courage and hope. Batwara 1947. Now in cinemas.

0: ¡Excelsior!
1: Good morning. Welcome to the world of entertainment. मनोरंजन की दुनिया में स्वागत है प्यारे प्यारे श्रोताओं का। आज शुक्रवार वर्ष 2026 के अगस्त महीने की 14 तारीख और भाई हमारे पाकिस्तानी श्रोताओं के लिए यौमे आजादी का दिन, किसी का जन्मदिन है, किसी की शादी की सालगिरह भी है और कहीं भाई बहुत बड़े बड़े प्रोग्राम आयोजित किए जा रहे हैं, जैसे हमारे हैरो वाले राजराजेश्वर गुरु जी आज संत संसद का समापन समारोह ऑर्गेनाइज कर रहे हैं बायरन हॉल हैरो लेजर सेंटर में। आपके घर परिवार में भी भाई कोई ऐसा कार्यक्रम है, कोई जन्मदिन या कोई सालगिरह या कुछ और, तो हमारी ओर से शुभकामनाएं स्वीकार कीजिए। माय नेम इज रवि शर्मा, आई एम विद यू टिल 1 o'clock दिस आफ्टरनून एंड द टाइम नाउ इन ब्रिटिश क्लॉक इज 5 minutes past 10। अब ऐसी जिंदगी को बसर क्या करे कोई, और तेरे बगैर शाम और सहर क्या करे कोई। मालूम है तू सब्र की ताकीद करेगा और तुझ बेखबर को जाके खबर क्या करे कोई। दीवारों दर पे जिस्म के लिखा है तेरा नाम, इस दिल में अब सिवा तेरे घर क्या करे कोई।
2: Like a radio. Let's return to the biggest hits back to back. This is Like a Radio, broadcasting across the Midlands on DAB Digital Radio with a refreshing mix of Bollywood classics and latest chart toppers. Download the Like a Radio mobile app and listen wherever you are in the world. Back to back hits across the Like a Radio network.

क्या बात है, बैक टू बैक संगीत के तहत दो गीत हमने आपको सुनाए। और भाई ये गीत तो कारवां फिल्म से था और लता मंगेशकर व सखियों की आवाजों में था। पर साहब क्या कहने, उस फिल्म के सारे ही गीत हिट थे और फिल्म भी हिट थी भाई। जितेंद्र, आशा परेख और अरुणा ईरानी का रोल भी बड़ा दमदार था उस फिल्म में। खैर साहब, फिल्मों की बातें करेंगे, फिल्मी गीतों की, संगीत की बातें भी होंगी, लेकिन आज पाकिस्तान के लोग योमे आज़ादी मना रहे हैं, उन्हें मुबारकबाद देंगे। और साहब बता दूं, 10:30 बजे आप सुनेंगे आज के प्रमुख समाचार। 11 बजे खबरों के बाद होगा आज का चिंतन यानी आज का विचार। दोपहर बाद 1 बजे तक सिलसिला जारी रहेगा, हम गाएंगे, गीत सुनवाएंगे, झूमेंगे और भाई बहुत कुछ सेलिब्रेशन टाइप चीज़ें जो है कार्यक्रम में शामिल करेंगे। कल भारत का स्वतंत्रता दिवस है, आज पाकिस्तान का योमे आज़ादी है। बात एक ही है, भाषाओं में अलग अलग टाइटल हो गए हैं, लेकिन एक बात कभी कभी सोचता हूँ मैं, पाकिस्तान योमे आज़ादी मनाता है, आज़ादी किससे, भारत से? नहीं, क्योंकि क्या पाकिस्तान भारत का गुलाम था? जब था ही नहीं पाकिस्तान पहले उससे, तो फिर भारत का गुलाम कैसे हो सकता है? या फिर अंग्रेजों का गुलाम था? नहीं, योमे आज़ादी की बजाय उसे अपना जन्मदिन मनाना नहीं चाहिए, सोचिएगा। वैसे आज 14 अगस्त को एक दिन पहले भारत की स्वतंत्रता से पहले, यानी स्वतंत्र योमे आज़ादी भारत की स्वतंत्रता दिवस से एक दिन पहले मनाते हैं। वैसे बता दूं आपको कि शुरू में पाकिस्तान में भी योमे आज़ादी 15 अगस्त को ही मनाने की ट्रेडिशन शुरू हुई थी, फिर बाद में इसे चेंज करके एक दिन आगे कर लिया गया, शायद ये साबित करने के लिए कि हम तो हर काम में आपसे आगे हैं, योमे आज़ादी के सेलिब्रेशन में भी। खैर साहब, मुबारकबाद उनको दें जो आज मना रहे हैं, और बधाई शुभकामनाएं उनको भी देंगे जो कल मनाएंगे, यानी भारत के लोग। और भाई जो लोग 22 अगस्त को यहाँ यूके में बड़ी धूमधाम से बहुत जोरों से सेलिब्रेट कर रहे हैं, भारतवंशी, भारत के लोग यानी इंडियन डायस्पोरा एंड इंडियन हाई कमीशन मिलकर मना रहे हैं, ऑन 22 अगस्त द इंडिपेंडेंस सेलिब्रेशन इन नवनेट सेंटर प्रिंटिंग हाउस लेन, तो भाई हेज में है ये, और 10 बजे से शाम

0: चार बजे तक फ्री एंटरटेनमेंट, फ्री एंट्री, फ्री पार्किंग, फ्री फूड, एवरीथिंग इज फ्री फॉर भारतवंशी, क्योंकि ये भारतवंशियों का प्रोग्राम है, भारतवासियों का भी, लेकिन इमिग्रेंट्स जो है, बाहर बसे हैं जो, यानी भारतीय प्रवासी या भारतवंशी कहते हैं कि वंश उनका भारत से जुड़ा हुआ है, तो भाई वो 22 अगस्त को है, उसके लिए भी अग्रिम शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाइयां।
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: SBI UK, yani State Bank of India UK, today offering 128 pounds and 65 pence for £1. 128.65. तो भाई 128.65 का रेट चल रहा है, दैट इज मैक्सिमम, एंड यू कैन ट्रांसफर वाया ब्रांच ऑनलाइन और बाय यूजिंग द योनो एसबीआई यूके मोबाइल ऐप। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
1: स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यूके ऑफर्स सेविंग्स प्रोडक्ट्स, बिजनेस बैंकिंग, बाय टू लेट मॉर्गेजेस एंड सेफ डिपॉजिट लॉकर्स। विजिट sbiuk.statebank टू लोकेट योर नियरेस्ट ब्रांच। टीज एंड सीज अप्लाई। गेट ऑल द लेटेस्ट ट्रैवल अपडेट्स फॉर द मिडलैंड्स एट ब्रेकफास्ट एंड ड्राइव। This is the Leica Radio Network, the largest Asian commercial radio network in the UK. Broadcasting in Greater London, Greater Manchester and the Midlands. Tune in wherever you are in the world by downloading the Leica Radio mobile app. Listen live or listen back to your favorite shows. Or log on to leicaradio.com and listen via the website. If you like what you hear, do tell us. Email us info@leicaradio.com. Or you can advertise on the Leica Radio Network by emailing sales@leicamedia.co.uk. This is the Leica Radio Network across London, Manchester and the Midlands.
2: This part of the show is brought to you by Dhurandhar.
3: Ladies and gentlemen, you are not ready for this.
2: Mega blockbuster Dhurandhar on Star Gold, 15th and 16th of August at 9 PM.
4: Leicester, तैयार हो जाओ एक यादगार बॉलीवुड नाइट के लिए। Jay's Entertainment presents Bollywood Legend Live in Concert featuring Bollywood actor Sanjay Kapoor, playback singer Aman Trika और female singer Mayuri Patalia. Sunday, 27th of September, De Montfort Hall, Leicester. Doors open 6:30 PM, show starts 7 PM. Tickets, book kare demontforthall.co.uk
5: या Mumbai Sandwich Station on 0116-332-0262 or call Mr. B on 07860-280655. Exclusive radio partner, Leica Radio.
6: Are you ready to embark on the journey of a lifetime? Look no further than City Bond Travel, your trusted local travel agent with an astounding 50 years of experience. From worldwide flights to exotic holiday packages, captivating group tours, luxurious cruises and soul-enriching yatras, we've got it all. Call City Bond Travel on 0116-266-6601 or visit our office on 5 Melton Road, Leicester.
7: History divided a nation but could never divide humanity. Witness the epic reunion of Sunny Deol and Rajkumar Santoshi in Batwara 1947.
8: को हिंदू मुसलमान में ना बांटिए।
7: स्टारिंग शबाना आजमी, प्रीति जिंटा, करण डियोल एंड अली फजल।
8: हर बच्चे के मुंह से निकला पहला लफ्ज माँ है।
7: प्रोड्यूस्ड बाय आमिर खान, एक्सपीरियंस द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ करेज एंड होप, बटवारा 1947, नाउ इन सिनेमाज।
9: वेडिंग सेलिब्रेशंस, कॉर्पोरेट इवेंट्स, रागसन सब कुछ एफिशिएंटली हैंडल करते हैं। परफेक्ट लोकेशन ढूंढने से लेकर इनक्रेडिबल थीम्स डिजाइन करने तक, वर्ल्ड क्लास कुजीन से हर छोटी बड़ी रिक्वायरमेंट तक मैनेज करते हैं। 30 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस हर इवेंट को खास बनाए। फॉरन का फोन मिलाए 0208390880 और विजिट ragasan.com। लोकेशन, डिजाइन, मैनेजमेंट या केटरिंग, रागासन।
10: लोकेशन, लोकेशन, लोकेशन
11: इन रियल एस्टेट, location is everything and this one is a winner.
12: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas
11: located in Dubai in a prime location for high appreciation.
12: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
11: Step outside and enjoy 50+ amenities inside the master community.
12: And the best part, townhouses and villas Greens start from just £711,000.
11: To book, call our London office on 020-3963-5757. Greens by Daniel, prime location.
13: location,
14: high appreciation.
13: In Dubai,
15: be part of a historic grand opening.
16: Experience the newly inaugurated BAPS Swaminarayan Mandir in Paris. A once-in-a-lifetime spiritual journey.
15: Travel with your family and witness this divine occasion along with the Eiffel Tower, Seine River Cruise and a Paris City Tour.
16: Departure 5th of September. Call now on 02-03-773-633.
15: Mantra Holidays. What's your travel mantra?

0: Feel Good Track. Brought to you by Derry Valley.
1: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, moti chur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
2: Manoranjan with Ravi Sharma. Like a radio.
3: वेरी गुड मॉर्निंग लाइका रेडियो नेटवर्क. अब आप रवि शर्मा से आज के प्रमुख समाचार सुनिए. आज की खास खास खबरों में भाई पहले तो नाइजल फराज पहुंच गए हैं पार्लियामेंट में फिर से चुनाव लड़कर के कामयाब होकर के और एक सशक्त आवाज है लोगों ने बधाई दे रहे हैं. लेकिन देखते हैं कि अब क्या कुछ होता है ब्रिटिश पार्लियामेंट में उनके आगमन से. एक खबर यह भी है कि भारत समेत 40 से ज्यादा मुल्कों ने चीन को टैरिफ से बचाने में मदद की है. उसके खिलाफ जो टैरिफ लगाया जा रहा था. खड़गे के शुद्धिकरण पर मायावती ने जताई नाराजगी. मनन मिश्रा के फैसले पर सीजीआई हुए नाराज. चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और अश्विन ने सरफराज की टीम में भूमिका को लेकर मैनेजमेंट से सवाल पूछे. भाई ये अलग अलग फील्ड से जुड़े हुए सवाल है जैसे ये क्रिकेट के बारे में था. लेकिन सबसे पहले ये खबर कि शहबाज शरीफ के बयान पर प्रधानमंत्री मोदी को लेकर कांग्रेस का एक बयान आया. पाकिस्तान के वजीर आजम शहबाज शरीफ ने एक बयान दिया. कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने पीएम मोदी से उसका जवाब मांगा है. पवन खेड़ा ने कहा कि शहबाज शरीफ का जो बयान आया है वो बहुत चौंकाने वाला है क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप खुद 100 से ज्यादा बार कह चुके हैं कि मैंने भारत पाकिस्तान के बीच सीज फायर करवाया, मैंने भारत को टेल ऑफ किया. उन्होंने जो भी कहा आपने सुना है. पवन खेड़ा के मुताबिक ये पवन खेड़ा भाई कांग्रेस के जो है स्पोक्स पर्सन भी हैं और कांग्रेस के नेता हैं. वो पवन खेड़ा के मुताबिक शहबाज शरीफ भी वही बोल रहे हैं और ट्रंप को शुक्रिया कह रहे हैं. राहुल जी ने संसद में मोदी जी को मौका दिया कि आप खड़े होकर बोल दीजिए कि ट्रंप झूठ बोल रहे हैं. और ये कांग्रेस की बहुत देर से कोशिश चल रही है कि मोदी जी ये कहें कि ट्रंप झूठ बोल रहे हैं. लेकिन इस पर एक यूं कहिए कि भाई सवाल बना हुआ है, सस्पेंस बना हुआ है, खामोशी बनी हुई है. नांदेड़ में घटना घटी है जिसका भी चर्चा है भारत में. नांदेड़ में सुखबीर सिंह बादल पर हमला हुआ है और उस हमले के बाद उनका बयान आया है. पंजाब के फॉर्मर डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर सुखबीर सिंह बादल ने अपने ऊपर हुए अटैक पर रिएक्ट किया है. उन्होंने कहा है कि उनका मकसद पंजाब में हालात को कंट्रोल में लेना और शांति भंग करना नहीं है, जिसकी अनुमति में शिरोमणि अकाली दल और अध्यक्ष के तौर पर कभी नहीं दूंगा. मेरे पिता ने भी इसकी इजाजत नहीं दी थी. दोनों बार उन्होंने मुझ पर सबसे पवित्र स्थानों पर हमला किया. सिखों का धार्मिक स्थान है नांदेड़. कहते हैं मैं कभी डरा नहीं और मैं अब भी नहीं डरता. जिनके ऊपर गुरु की कृपा का हाथ होता है उन्हें कोई आंच नहीं आ सकती. अटैक के बाद ये सुखबीर सिंह बादल का बयान आया. आइए अब इंटरनेशनल खबरों में देखें. अमेरिका का दावा, भारत समेत 40 से ज्यादा मुल्कों ने चीन को टैरिफ से बचाने में मदद की है. अमेरिका कह रहा है. व्हाइट हाउस ने कल जारी एक रिपोर्ट में दावा किया कि भारत समेत 40 से ज्यादा कंट्रीज ने चीन को अमेरिकी टैरिफ से बचने में मदद की है, जिसके लिए चीनी सामान को ऐसे देशों के रास्ते अमेरिका भेजा गया जहां इंपोर्ट ड्यूटी कम है. रिपोर्ट में कनाडा, भारत, मेक्सिको, जापान और साउथ कोरिया समेत कई देशों का नाम लिया गया है. व्हाइट हाउस के मुताबिक इन मुल्कों के जरिए चीन ने अरबों डॉलर के अमेरिकी टैरिफ से बचने की कोशिश की है. भारत से आने वाली खबरों में खड़के के शुद्धिकरण, पवित्रीकरण भाई, उसको पवित्र बनाने का जो प्रोसेस, ये एक खबर काफी चर्चा में है. खड़गे के शुद्धिकरण पर मायावती ने नाराजगी जताई है. उत्तराखंड के हल्द्वानी शहर में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की सभा के बाद मंच के कथित शुद्धिकरण को लेकर, ये मंच की बात है, स्टेज की, यानी जहां वो काम करके गए हैं तो उसको पवित्र बनाइए, लेकर के बीएसपी चीफ मायावती ने कड़ा रिएक्शन दिया है. उन्होंने उत्तराखंड सरकार को बिना देरी किए ऐसे जातिवादी और सामंती तत्वों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की हिदायत दी है या रिक्वेस्ट की है. बीजेपी ने नालसार विवाद के बीच बीसीआई अध्यक्ष मनन मिश्रा का इस्तीफा मांगा है. हैदराबाद की नालसार लॉ यूनिवर्सिटी के 2026 के बैच के ग्रेजुएट्स की एनरोलमेंट को लेकर एक विवाद खड़ा हो गया। और इसी बीच सीजेपी के स्पोक्स पर्सन सौरभ दास ने बार बार काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष मनन कुमार मिश्रा पर निशाना साधा है। ये सीजेपी बता दें क्या है, कॉकरेच जनता पार्टी। सौरभ दास ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट को करते हुए लिखते हुए उन्होंने लिखा है कि मनन मिश्रा को लेकर जवाबदेही तय करने की जरूरत है। उत्तराखंड सुरंग हादसा, जख्मी व्यक्ति ने बताया कि टनल के भीतर क्या हुआ, टनल में एक हादसा हुआ। उत्तराखंड के चमोली जिले में हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट की बनने वाली यानी अंडर कंस्ट्रक्शन सुरंग में पानी और मलबा घुसने से 7 लोगों की मौत हो गई जबकि 13 लोग जख्मी हुए हैं। हादसे के बाद सुरंग में फंसे लोगों को बाहर निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन अब भी चल रहा है। और बाहर निकाले एक व्यक्ति ने बताया कि हालत बेहद खतरनाक थी और किसी को भी संभलने तक का वहां मौका नहीं मिला। मिथुन चक्रवर्ती का बंगाल सरकार पर तंज, कहते मुझे छोटा कलाकार समझते हैं इसलिए। भाई मिथुन तो बंगाल सरकार के समर्थक रहे हैं, वो तो बीजेपी के ही आदमी हैं। कोलकाता में महान बंगाली अभिनेता उत्तम कुमार की जन्म शताब्दी के समारोह को लेकर के सीएम शुभेंदु अधिकारी से मुलाकात के बाद बीजेपी नेता और अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती ने बंगाल फिल्म फेस्टिवल में न्योता न मिलने पर नाराजगी जताई है। नाराज बनना बनता है उनका नाराज होना, भाई बंगाल फिल्म फेस्टिवल हो और आप मिथुन को इग्नोर करें नहीं चलेगा। एक और इंटरनेशनल खबर, पूर्वी जापान में रिकॉर्ड बारिश से भारी नुकसान हुआ है, 4 लोगों की मौत और हजारों मुसाफिर एयरपोर्ट पर फंसे हुए हैं। जापान के चिंबा प्रांत में रिकॉर्ड बारिश के चलते 4 लोगों की मौत हो गई है। और साहब आज पाकिस्तान अपना योम आजादी मना रहा है, लेकिन पाकिस्तान के वजीर आजम शहबाज शरीफ ने सिंधु जल संधि को समझौते को लेकर भारत को एक सीधी वार्निंग दे डाली है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के पानी की एक एक बूंद उसकी रेड लाइन है और अगर भारत ने अपना रुख नहीं बदला तो उसे सीधा जवाब दिया जाएगा। इस्लामाबाद में कल यादगार फतेह के ओपनिंग सेलिब्रेशन में बोलते हुए शहबाज शरीफ ने भारत की ओर से सिंधु जल समझौते को एक तरफा तौर पर सस्पेंड किए जाने पर उन्होंने टिप्पणी की है। पाकिस्तानी वजीर आजम ने अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का भी शुक्रिया अदा किया कि उन्होंने युद्ध रुकवाने में अपनी भूमिका अदा की। उन्होंने दावा किया कि ट्रंप ने पिछले साल भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर कराने में जो रोल अदा किया है उससे लाखों लोगों की जान बचाई है उन्होंने। ये थे आज के प्रमुख समाचार, समाचार समाप्त होते।
2: This is Laika Radio. Tasty track of the hour brought to you by Coca Noodles.
3: आइए समाचारों के बाद अब लौट आते हैं संगीत की दुनिया में और सुनवाते हैं आपको किशोर कुमार और आशा भोसले की दमदार आवाजें।
4: आवाज की दुनिया के दोस्तों, आप सुन रहे हैं मनोरंजन प्रोग्राम आपके अपने प्रेजेंटर रवि शर्मा के साथ।

0: Tasty track of the hour, sponsored by Coca Noodles. Goodness in every bite. Try it today. Available in your nearest convenience store.
1: Ye hai Leica Radio.
2: Holiday breaks are brought to you by Southall Travel.
3: और मेरे भाइयों, साउथ हॉल ट्रेवल का वो मशवरा, साउथ हॉल ट्रेवल का वो संदेश के वो सारी पाबंदियां अब उठा ली गई हैं और खुला आमंत्रण है दुबई ट्रेवल करने के लिए। दुबई के लिए भाई वो न्योता दे रहे हैं, कॉल साउथ हॉल ट्रेवल फॉर द मोस्ट कम्पिटेटिव दुबई डील्स ऑन 02085748410।
2: Breaks were brought to you by Southall Travel. Low prices for flights, hotels, or holiday packages. Visit southalltravel.co.uk. Get all the latest travel updates for the Midlands at breakfast and drive. This is the Leica Radio Network, the largest Asian commercial radio network in the UK, broadcasting in Greater London, Greater Manchester, and the Midlands. Tune in wherever you are in the world by downloading the Leica Radio mobile app. Listen live or listen back to your favorite shows, or log on to leicaradio.com and listen via the website. If you like what you hear, do tell us. Email us info@leicaradio.com, or you can advertise on the Leica Radio Network by emailing sales@leicamedia.co.uk.
1: ये है लाइका रेडियो।
4: लेस्टर फेल्कन कैश एंड कैरी फेस्टिव शॉपिंग का परफेक्ट डेस्टिनेशन। राखी और गणेश आइडल्स अब अवेलेबल हैं सभी फेल्कन स्टोर्स पर। ओनम संध्या के लिए प्री बुकिंग्स भी शुरू हो चुकी हैं। फेल्कन स्नैक्स 300 ग्राम्स की फुल रेंज सिर्फ £1.99 ईच। मुस्तफा देहरादूनी राइस 20 LBS सिर्फ 13.49। सुहाना खमन ढोकला 500 ग्राम्स सिर्फ 1.99 ईच या 2 for £2.99। टिल्डा ग्रैंड बासमती 20 kg सिर्फ 29.96। एस मोतीराम नमकीन अब सिर्फ 99 पीस से शुरू और हर्ज़मैन बटर घी 20 kg still 10.99.
5: Falcon Cash and Carry 82A Syston Street West Leicester LE1 2JU and 2A Rollout Cell Leicester LE5 4UN.
2: One performer.
4: Countless personalities. A whole universe of entertainment. Sunil Grover live UK Tour 2026.
2: 29th October, OVO Arena, Wembley, London. 31st October, Mattioli Arena, Leicester.
4: From Gutti to Dr. Mashur Gulati. From Rinku Bhabhi to brand new surprises. Experience Sunil Grover live on stage in the UK.
2: Produced by ImagineX Global and Tim's Media Productions.
4: Supporting mental health and well-being awareness. Tickets are on sale now via Ticketmaster, Eventbrite and AXS.
2: For more information, contact 07585 801 801. Official radio partner, Leica Radio Network.

और महेश सीधे हरियाणा से आइए। तो भाई ये सुनिए गीता ज्ञान और कुरुक्षेत्र का इनविटेशन जो लेकर चलेगा हमें खबरों तक।

0: मीनाक्षी पांचाल और सहेलियों की आवाजों में भाई ये गीत खबरों तक ले आया है। और खबरों में एक खबर जो बहुत परेशान कर रही है, कोई माँ अपनी ही संतान की हत्या कर सकती है? एक माँ को अपनी बेटी का हेयर ड्रायर के द्वारा कत्ल करने के अपराध में 6 साल की सजा सुनाई गई है। लेट्स हियर द न्यूज।
1: Across the Midlands, this is Leica Radio on DAB and online.
2: A part of the Leica Radio Network.
3: Top stories. A mother who killed her baby daughter using a hairdryer has been jailed for 6 years. Courtney Gartshaw from Peterhead in Aberdeenshire caused significant and sustained heat to 3-month-old Dahlia Rose's head and body. A man who was jailed for life 23 years ago for murdering his estranged wife will remain in prison, reversing the parole board's decision to release him. Glyn Razzle killed his partner Linda in Swindon in 2002, but her body's never been found. The parliamentary watchdogs resumed its investigation into Nigel Farage following his victory in the Clacton by-election. It's looking into the financial support he received before the general election. Labour Party Chair Bridget Phillipson says Mr Farage can now settle questions about his donations once and for all.
4: Nigel Farage has obviously spent the summer chasing a bin around Clacton. We've got the result now, and now that result is clear. Nigel Farage can set out to the public exactly what's been going on in recent weeks and months.
3: More than 1 million people have signed a petition to stop PC Andrew Harper's killers from being released early from prison. There's concern the two men could be freed under government plans to ease overcrowding in jails. 2 people are in hospital with serious injuries after a train derailed in East Sussex yesterday. Investigators are looking at whether high temperatures played a part in the incident, which happened just before 4 o'clock near Lewes Station. Images from the scene showed some carriages tipped onto their side. Rob Bradley was on the train with his 6-year-old daughter, Mabel.
5: It was incredibly scary when it was actually happening. There was a lot of loud bangs, a lot of movement in the train. When we realised something was going wrong, the train started rocking from side to side and then vertically lifted off the track.
3: And Aston Villa's European Cup winning goalkeeper Jimmy Rimmer has died aged 78. The club says he was one of the finest goalkeepers of his generation. From Sky News, I'm Kat Suave.
1: This is Leica Radio Network, officially London's number one Asian commercial radio group. This is the Leica Radio Network, the largest Asian commercial radio network in the UK. Broadcasting in Greater London, Greater Manchester and the Midlands. Tune in wherever you are in the world by downloading the Leica Radio mobile app. Listen live or listen back to your favourite shows. Or log on to leicaradio.com and listen via the website. If you like what you hear, do tell us. Email us info@leicaradio.com. Or you can advertise on the Leica Radio Network by emailing sales@leicamedia.co.uk. Leica Radio Weather is brought to you by Southall Travel, taking you to the best destinations in the world.
0: Very good morning, bhai. Aaj ke mausam mein it will be dry, sunny and hot through some areas of cloudy may develop later in the afternoon and evening. और कल की बात ना कीजिएगा भाई। कल मैं जब घर पहुंचा, एक तो इतना समय लगता है कि ट्रेन रेलगाड़ियों की आवाजाही में रुकावट है। कल घर के सामने, मेरे ठीक सामने आग का धुआं बता रहा था कि कितनी गर्मी है, जिससे आग लग गई। तो खैर साहब, आज जो है उतनी गर्मी नहीं है कल जितनी, लेकिन कम भी नहीं है बहुत ज़्यादा। आज मैक्सिमम टेम्परेचर रहेगा 33 डिग्री सेल्सियस, हल्की हवाएं भी चलेंगी।
1: For special rates to India, Pakistan, Dubai, Maldives, Thailand, USA, Canada, Africa, Australia and New Zealand, call Southall Travel 24 hours a day, 7 days a week on 0208 574 8410.
6: मनोरंजन विद रवि शर्मा।
0: और बहनों भाइयों, कल के मौसम की बात करते हुए तो जो है ना, दिल धक धक करने लगता है। अनेक जगहों से ये खबरें आई और यूं समझिए कि फायर ब्रिगेड की हेल्प के लिए कितनी कॉल्स की गईं, कहां कहां। अब भाई, सूरज की गर्मी, तपती हुई धरती और उठता हुआ धुआं और जलती हुई आग ने डरा के रख दिया। मैं जब घर पहुंचा तो भाई वहां पर सड़क पर एंट्री नहीं करने दे रही थी पुलिस, और मैंने देखा कि ठीक मेरे घर के सामने से धुएं का गुब्बार निकल रहा था और वो ये फैसला कर पाना मुश्किल था कि ये मेरे घर से निकल रहा है या आस पड़ोस से या सामने वाली जगह से। और सामने हमारे एक भाई पार्क है, एक बॉलिंग ग्राउंड है, बड़ा खूबसूरत होता था किसी समय। आप उसकी ओरिजिनल मूर्त देखना चाहें तो हमने एक फिल्मी गीत की शूटिंग की थी वहां, और वो धारे जब पहुंचा, अगर आप इस टाइटल से यूट्यूब में देखेंगे तो आपको वो दिखाई देगा कितना खूबसूरत वो ग्राउंड है। था है कहां, जल गया कल भाई वो था। और उसमें हमने शूट किया, मेरे ऊपर पिक्चराइज है गाना, वो देखेंगे आप, रवि शर्मा को भी देखेंगे, उस खूबसूरती को भी देखेंगे। लेकिन कल साहब उस धुएं के गुब्बार में वो आग लगी थी हमारे घर के बिल्कुल सामने वाले बॉलिंग ग्राउंड में। सारी घास सूख चुकी थी और पत्ते झड़ झड़ के भाई सूखे पत्ते फैले थे उसमें, आग लगी तो फैल गई और इतना धुआं, फिर फायर ब्रिगेड पुलिस और साहब वो ही नाकाबंदी, आने जाने के लिए रास्ता रोक दिया गया। तो कुल मिलाकर के सावधान करने को जी चाहता है कि वो बीड़ी सिगरेट आप फेंक देते ना, आजकल थोड़ा एक्स्ट्रा सावधानी बरतिए भाई, पत्ते बड़ी जल्दी आग पकड़ते हैं, सूखे पत्ते, घास और वो जो क्या होता अपना भाई ये जो आग से खेलने वाला काम, खैर आग से खेलने वाला नहीं है, है तो बारबेक्यू जो होता है और उसमें जो पोर्टेबल होती है ना, वो हल्के से भाई एक बार इस्तेमाल की और फिर उनको डंप कर दिया, फेंक दिया, बहुत सावधानी बरतने की ज़रूरत है। तो ये संदेश देते हुए कि ये दो चार दिन की जो गर्मी और है इससे निपट लीजिए, अच्छा मौसम भी आएगा।

वेरी गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका मनोरंजन कार्यक्रम के दूसरे दौर में। और बहनों भाइयों, इस दौर में हम आपका स्वागत चिंतन से किया करते हैं। थॉट फॉर द डे यानी आज का विचार, और आज का इतिहास, आज का दिन, आज की महत्व पर भी हम चर्चा करते हैं। तो आज का विचार यानी चिंतन प्रस्तुत है। आज के चिंतन में हम शामिल कर रहे हैं हमारे मित्र और हमारे भाई रेगुलर कॉन्ट्रीब्यूटर श्री प्रमोद कैट का भेजा आलेख। एक मीठा सा निमंत्रण भी आपने भेजा है। कहते हैं कि हमारे यहां स्वामी उमाकांतानंद जी आ रहे हैं, उनका प्रवचन, और उनके प्रवचनों में बड़ी प्रैक्टिकल बातें होती, तो आप आइएगा मंगलवार को दोपहर में 12 से 2 के बीच। मैं कोशिश करूंगा कैट साहब, आप इन बुला रहे हैं हमें लक्ष्मी नारायण मंदिर हाउंसलो में जो नेविल क्लोज में है। लेकिन आज का संदेश आपका बड़ा मार्मिक है। आज के चिंतन में आप लिख रहे हैं कि ठीक है, सब पाकिस्तानियों को उनको यौम आजादी की मुबारकबाद दीजिए, लेकिन आज के दिन भारत में अपने पड़ोस में यौम आजादी की मुबारकबाद देते हुए इस बात की भी याद दिलाई जा रही है कि 14 अगस्त का जो ऐतिहासिक भाई महत्व है, बड़ा भावनात्मक दिन था। ये आजादी की घोषणा होने वाली थी भारत के लिए भी, पाकिस्तान के लिए भी, लेकिन उससे पहले पाकिस्तान अस्तित्व में आया। ऐसा तो कोई बात नहीं भाई, बंटवारे होते हैं, सुख दुख से अनजान कभी हमसाए नहीं होते, और घर बंटने से अपने कभी पराए नहीं होते। लेकिन यहां तो साहब पराए हुए, और इतने पराए हुए कि खून की नदियां बही। 14 अगस्त 1947 को इंडियन सब कॉन्टिनेंट के इतिहास का अत्यंत महत्वपूर्ण और भावनात्मक दिन था। इस दिन ब्रिटिश भारत के बंटवारे के साथ पाकिस्तान एक इंडिपेंडेंट डोमिनियन के रूप में वजूद में आया। कराची में सत्ता परिवर्तन का, हस्तांतरण का एक बहुत बड़ा प्रोग्राम हुआ, और मोहम्मद अली जिन्ना ने पहले गवर्नर जनरल के रूप में पद संभाला। और इसके बाद 14 और 15 अगस्त की मिडनाइट में भारत स्वतंत्र हुआ। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसी ऐतिहासिक रात अपना प्रसिद्ध ट्राइस्ट विद डेस्टिनी भाषण दिया, स्पीच दी। मोहम्मद अली जिन्ना ने जहां गवर्नर जनरल के रूप में अपनी स्पीच में ये वादा दोहराया कि पाकिस्तान में सभी धर्मों को, सभी कम्युनिटीज को फलने फूलने का मौका दिया जाएगा, बराबरी के अधिकार दिए जाएंगे। लेकिन उसके बाद आप देख रहे हैं कि माइनॉरिटीज की तादाद कितनी तेजी से कम हुई वहां, और तभी से शुरू हो गई जब बंटवारा हुआ, तो कितने लोग वहां से उखड़ कर, अपनों से बिछड़ कर, घर बार प्रॉपर्टी से उजड़ कर, कैसे सीमा पार करके निकले हैं। यानी आज के दिन आजादी की खुशी नहीं बल्कि विभाजन की पीड़ा, बंटवारे का दर्द याद करने का दिन भी है। 1947 में बंटवारे के कारण करोड़ों लोगों को अपना घर बार छोड़ना पड़ा, बड़े पैमाने पर वॉयलेंस हुई। चिंतन, इसी याद में भारत सरकार ने 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस, मुश्किल लगे ये शब्द बता दे, विभाजन का मतलब बंटवारा, विभीषिका का मतलब दर्द, प्रकोप। बंटवारे का जो हॉरर, उसकी याद करने का दिन कैसे भूल सकते हैं भाई, कितने लोग मरे, कितना खून बहा, कितने उजड़े, कितने रेप हुए, लूटपाट हुई। 2021 में इस रूप में मनाने का ऐलान भारत में हुआ।
कि बंटवारे को कैसे भूल सकते हैं। इसका उद्देश्य उन लोगों के संघर्ष, उनके दर्द और उनके बलिदान को याद कर रहा है जो इस बंटवारे में विक्टिम बने। आज का संदेश यह है कि भाई इतिहास को केवल विजय के रूप में नहीं बल्कि उसकी पीड़ा की सीख लेने की भी जरूरत है, उस दर्द से कुछ सीखने की जरूरत है कि सुख दुख से अनजान कभी हमसाए नहीं होते, घर बटने से अपने कभी पराए नहीं होते। पर यहां तो घर बटे ही नहीं, घर लूटे और अपने पराए नहीं हुए, अपने दुश्मन बन गए। अब बहन भाइयों, हमारे बड़े अच्छे मित्र केतन अडानी वो भी भेजते हैं एक स्मृति। और भाई और भी कई लोगों ने उस जमाने को, उस दौर को, उस दर्द को याद किया है। हमारे हरियाणा में बहुत सारे लोग पाकिस्तान गए और उन्होंने पाकिस्तान में हरियाणा बसा रखा है। वही बोली, वही खाना पीना, वही राग रंग रागनिया, लेकिन साबु जड़ के तो जाना पड़ा। अब आपको बता दें कि कई इलाके ऐसे थे हरियाणा में जहां मुसलमान जाना नहीं चाहते थे और वहां के गांव के लोग, ये गांव की बात कर रहा हूं मैं, शहर की नहीं, शहरों में अटैक हो रहे थे पाकिस्तान में हिंदुओं पर, सिखों पर और हिंदुस्तान में मुसलमानों पर। लेकिन गांव में इतने सालों से लोग मिलजुल के रहते थे, वहां तो मिलिट्री के ट्रक आते और कहते भाई जिसको पाकिस्तान जाना है तो हम सुरक्षित पहुंचा रहे हैं, तो ट्रकों में भर भर के लोगों को ले जा रहे थे। पर लोग जाते हुए रो रहे थे, गले लिपट लिपट के विदाई ले रहे थे और गांव के लोग उन्हें विदा कर रहे थे जैसे अपनों को कोई दूर भाई काम के लिए, नौकरी के लिए भेज रहा है, हमेशा के लिए जा रहे हैं, ये जानकर तकलीफ उनकी और बढ़ रही थी। लेकिन बहनों भाइयों, खून खराबा भी हो रहा था, रेलगाड़ियां लाशों से अटी हुई आ रही थी पाकिस्तान की ओर से, इधर से भी खून खराबा, तो बदले की भावना से जो है वायलेंस खूब जोर पकड़ रही थी। अब सही संख्या का तो अंदाज लगाना मुश्किल है, लेकिन मिलियंस ऑफ पीपल वर किल्ड। अब आप ही बताइए, सेलिब्रेट करते हुए इन बातों को कैसे भुला सकते हैं हम? इतिहास से संकल्प लें कि नफरत और वायलेंस को समाज में जगह नहीं देंगे, जाति भाषा क्षेत्र या किसी भी भेदभाव से ऊपर उठकर मानवता को सम्मान देंगे। भाई लोग कहते हैं कि धर्म का काम है जोड़ना, धर्म का काम है लोगों को सुखी बनाना, पर धर्म का काम तोड़ना,

मेरा मुल्क है, मेरा वतन है, नहीं जाऊंगी। गांव वालों ने बहुत समझाया, हाथ जोड़े पैर पकड़े, क्योंकि बहुत प्यार था, सम्मान था। लो सब लोग नहीं बटना चाहते थे, नहीं कटना चाहते थे, एक दूसरे से नहीं हटना चाहते थे, उस रिश्ते से जो बरसों से चला आ रहा था। बुढ़िया ने कहा, कुछ भी कर लो, नहीं जाऊंगी। तो गांव वालों ने कहा, अगर बाहर से कोई आके अटैक करता है, गांव में तो सब आपकी इज्जत करते हैं माई, कोई कुछ नहीं कहेगा। लेकिन रात को हमले होते थे, लोग पहरा देते थे गांव के लोग, कि मुसलमानों को कोई तकलीफ ना, उन पर कोई अटैक ना करे। गांव में थे तो भाई आर्य समाज के कुछ लोगों ने कहा, माई ऐसा करते हैं, अगर कोई आपसे पूछे तो आप कहना कि आप हिंदू हैं। और ऐसा करते हैं कि गांव के बाहर एक मंदिर था, मंदिर में उनके लिए रहने की जगह बनाई, और भाई उसमें एक प्याऊ थी, गर्मी के दिनों में पानी पिलाने का काम उसे दे दिया, तनख्वाह बांध दी, और कहा कि माई मंदिर है, कोई आपके पास आए तो कहना मैं हिंदू, और हम बना देते हैं हिंदू। उन्होंने भाई जल, गंगा जल का इस्तेमाल किया, कुछ मंत्र बोले और कहा, माई अब तुम हिंदू हो, कोई अटैक नहीं करेगा आप पर, कह देना कि आप हिंदू हैं। अब साहब लोग पानी पीने लगे, माई रह गई, पाकिस्तान अपनी जगह, हिंदुस्तान अपनी जगह, बस गए। एक बार एक पंडित जी किसी और मंदिर से वहां आए, और गर्मी में प्यास उन्हें लगी थी, वहां से गुजरते हुए मंदिर के सामने प्याऊ थी, मंदिर वालों की तरफ से ही थी, पीने के लिए रुके। तिलकधारी पंडित जी ने पानी पिया और जब देखा कि उनका पहनावा और उनकी चाल ढाल सब वो मुसलमानों वाली थी बुढ़िया की, तो कहते हैं, अरे माता जी, मैंने आपके हाथ से पानी पिया, आप तो मुसलमान हैं। कहते, नहीं नहीं नहीं पंडित जी, घबराओ मत, मैं हिंदू हूं। जैसा माई को बताया गया था कि भाई आप हिंदू हो चुकी हैं, चिंता मत करें, मंदिर में कोई यहां पर आपको तकलीफ नहीं होगी। तो भाई उसने कहा कि नहीं नहीं नहीं, आप मुसलमान हैं, सच बताओ, आपके हाथ से मैंने पानी पिया है, आपका खान पान जो है वो, क्योंकि पंडित लोग जो है किसी ऐसे व्यक्ति से भी पानी पीना अपराध मानते हैं जो भाई मांसाहारी हो जो। तो माई ने कहा, नहीं मैं कसम खाती हूँ, मैं हिंदू हूँ। ओके, अबे यकीन नहीं है, अल्लाह कसम मैं हिंदू हूँ। पंडित जी चौंके, क्या कह रही हो? अरे हाँ कह रही हो, खुदा कसम हिंदू हूँ। मानते नहीं हो। अब वैनो भाइयों, पंडित जी का शक और विश्वास में बदल गया कि आप मुसलमान। तो माई ने समझाया, देख बेटा, अल्लाह कसम खाऊं या राम कसम खाऊं, बरसों से अल्लाह कसम खाती आ रही हूं, इसलिए आदत पड़ गई है, राम कसम भी खा लूं मुझे कोई फर्क नहीं, क्योंकि मुझे पता है उसके नाम अलग हो सकते हैं, है वो एक ही, कहीं बन बैठा साध, कहीं लेता है समाध, कहीं जोगी कहीं नाद, कहीं जंगम झमेला है, कहीं करता है राज, कहीं फिरता मोहताज, कहीं ब्याह कहीं काज, कहीं दूल्हा अलबेला है। वो है तो अपार, वेद पायो नहीं पार, वो है तो अकेला पर अनेक खेल खेला है, वो एक है, उसके नाम कहीं है, उसके रंग रूप कहीं है। बेटा सब अल्लाह को मानते हैं पर अल्लाह की नहीं मानते, सब वाहिगुरु को मानते हैं पर वाहिगुरु की नहीं मानते, कि मानुष की जात सब एक ही पहचान, वो अव्वल अल्लाह रूप बनाया भाई, वो राम को मानते हैं, राम की नहीं मानते।

लंबे सफर को मीलों में मत बांटिए, कौम को कबीलों में मत बांटिए, एक महासागर है वो हिंदुस्तान, वो भारत, इसको नदियों और झीलों में मत बांटिए, हम एक थे, हम एक हैं। इतिहास में झांक कर देखोगे तो अपनी नसों में वही खून पाओगे जो हमारी नसों में दौड़ रहा है।

जमी बट गई, आसमान बट गया, खुदा बट गया, भगवान बट गया। हिंदुस्तान बट गया, पाकिस्तान भी बट गया, उसमें से बांग्लादेश बन गया। पर शास्त्र कहते हैं, धर्म कहता है, भारतीय संस्कृति कहती है कि लंबे सफर को मीलों में मत बांटिए, कौम को कबीलों में मत बांटिए। एक महासागर है वो भारतीय सबकॉन्टिनेंट, इसको नदियों और झीलों में मत बांटिए। बंटवारा दुखदाई होता है। पूछो उनसे जो अपने देश से उखड़े, अपने परिवारों से बिछड़े, जो अपने घरों से उजड़े। ये आजादी का महोत्सव बंटवारे की त्रासदी भी है, संकेत कर दिया है, समझ जाइए। आज का चिंतन, आज का विचार, जिसके लिए भाई आलेख हमारे प्रमोद कैट साहब ने भिजवाया हंस मंदिर से, केतन अडानी साहब ने भिजवाया हमें नवनेट सेंटर से, इससे एक संदेश, संघो शक्ति कलो योगी। और ये शेर भाई मैंने लिखा था कभी, के सुख दुख में सुख दुख से अनजान कभी हम साए नहीं होते, और घर बटने से अपने कभी पराए नहीं होते। जोड़ने की बात करते हैं, दौड़ने और काटने के नहीं, बांटने के नहीं। आज का चिंतन, आज का विचार, जिसके साथ गीत हमने महेंद्र कपूर और साथियों की आवाज में सुनवाया, आज का चिंतन अब समाप्त होता है।

0: खैर भाइयों, याद दिला दूं आपको, आज पाकिस्तान में यौमे आजादी मनाया जा रहा है, कल भारत स्वतंत्रता दिवस मनाएगा। लेकिन केतन अडानी हमें याद दिलाते हैं कि 22 अगस्त को भारतवंशी भाई 15-20 हजार तक लोग इकट्ठे होते हैं नवनेट सेंटर में, विशाल कार पार्क तो फ्री पार्किंग, विशाल प्रांगण फ्री एंट्री, फ्री एंटरटेनमेंट, फ्री फूड, सब कुछ फ्री, क्योंकि भारतवंशी मिल करके आयोजित करते हैं ये कार्यक्रम। इंडियन डायस्पोरा एंड इंडियन हाई कमीशन अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में भाई ये कार्यक्रम जो है वीकेंड पर कर रहे हैं वो लोग 16 अगस्त को। आज हमें फिर याद दिला रहे हैं हमारे राजेश्वर गुरुजी के, हम संत संसद का समापन कर रहे हैं, यानी आज समाप्त हो रही है ये संसद जो विश्व में प्रेम और भाईचारा फैलाने के लिए, सद्भावना के प्रचार प्रसार के लिए भ्रमण कर रहे हैं। छठी संत संसद चल रही है और आज हेरोलेजर सेंटर के बायरन हॉल में उसका समापन शाम को हो रहा है। भाई सबको बधाई शुभकामनाएं दोहराते हुए और बंटवारे के दर्द की भी याद दिलाते हुए आज का चिंतन अब समाप्त होता है।
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: State Bank of India UK. भाई याद दिला रहे हैं आज का रेट, एक पाउंड के बदले भारतीय करेंसी में वो रुपयों में दे रहे हैं 128.65 रुपीस, 128 रुपए और 65 पैसे का रेट चल रहा है। यू वांट टू सेंड मनी टू योर फैमिली मेंबर्स फ्रेंड्स, राखी पर बहनों को भेजना चाहते हैं पैसे, गो टू एनी ब्रांच, यू कैन ट्रांसफर वाया ब्रांच ऑनलाइन और बाय यूजिंग द योनो SBI UK मोबाइल ऐप। TNC अप्लाई।
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply. Leica Radio.
2: This part of the show is brought to you by Dhurandhar.
3: Ladies and gentlemen, you are not ready for this.
2: Mega blockbuster Dhurandhar on Star Gold, 15th and 16th of August at 9 p.m.
4: Leicester, तैयार हो जाओ एक यादगार बॉलीवुड नाइट के लिए। Jay's Entertainment presents Bollywood Legend live in concert featuring Bollywood actor Sanjay Kapoor, playback singer Aman Trika और female singer Mayuri Patalia. Sunday, 27th of September, De Montfort Hall, Leicester. Doors open 6:30 p.m. Show starts 7 p.m. Tickets book kare demontforthall.co.uk
5: या Mumbai Sandwich Station on 0116-332-0262 और call Mr. B on 07860-280-655. Exclusive radio partner, Leica Radio.
6: Location, location, location.
7: In real estate, location is everything, and this one is a winner.
6: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas.
7: Located in Dubai, in a prime location for high appreciation.
6: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
7: Step outside and enjoy 50+ amenities inside the master community.
6: And the best part, townhouses and villas, Greens start from just £711,000.
7: To book, call our London office on 02039635757. Greens by Danube, prime location,
6: high appreciation
7: in Dubai.
8: Citybond Travel proudly presents Yatra Tours 2026.
9: Discover Kailas Mansarovar, Chardham, Amarnath, Sri Lanka with Ayodhya, Ayodhya with Kashi, the Golden Temple Amritsar and more.
8: Book before the 31st of October and get £150 off Kailash or £100 off any other Yatra Tour.
9: Also explore 2026 cruises
8: from Alaska to the Caribbean, the Mediterranean, Japan and Korea. Visit us at 5 Melton Road, Leicester, or call Citybond Travel on 01162 167 225.

0: Now visit starters.co.uk or call 0208-900-2323.
1: The wait is over. Imran Hashmi returns in the next chapter of a cult classic, Awara Pan 2.
2: Usne mujhe chua, par apnaya nahi.
1: Now in cinemas. For your nearest cinema listings, visit Bakronia Media on Instagram.
3: हे फ्रेंड्स के साथ वीकेंड पार्टी हो या खुद के साथ नेटफ्लिक्स एंड चिल, अ देसी तड़का इज टोटल रिस्क है ना.
4: वेल शी इज टॉकिंग अबाउट जैमीन फूड पोटैटो चिप्स, क्रंची टेस्टी एंड टोटल देसी स्वाद इन चार मजेदार फ्लेवर्स.
3: क्रंच कैन नॉट वेट, सो विजिट योर नियरेस्ट एथनिक स्टोर एंड ग्रैब योर जैमीन फूड्स पोटैटो चिप्स नाउ.
5: लिस्टर नवरात्रि नी धमाकेदार रातों माटे थई जाओ रेडी. KDR इवेंट्स एंड बीच प्रमोशंस प्राउडली प्रेजेंट्स नवरात्रि फेस्टिवल 2026, 11th टू 20th अक्टूबर. Live from India, Garba, Dandiya, music and a full-on festive vibes every night from 7 PM at Avanti Field School, Leicester. Tickets just £5 the start. Book your tickets now on Ticket Source or call BJ 07957-477-330. Radio partner, Leica Radio.
6: Leica Radio launches Birmingham wide on DAB from September 1st. New hits on Leica Radio.

0: उस्ताद नुसरत फतेह अली खान साहब, क्या पर्सनालिटी थी भाई, क्या आवाज़, क्या अंदाज था खान साहब का। और बड़े फख्र से मैं लोगों को बताता हूँ कि मुझे उनके साथ काम करने का मौका मिला, और वो तस्वीरें मैंने सजा के रखी हैं अपनी एल्बम में भाई, खान साहब के साथ स्टेज पर। पर मैं अकेला नहीं, उनके प्रशंसक, उनकी भाई चाहने वाले नाना पाटेकर और मनीषा कोइराला और कितने लोग वहाँ पर उस कार्यक्रम में मौजूद थे। मैं तो सर चलो काम कर रहा था, स्टेज कंडक्ट कर रहा था, लेकिन ये सिर्फ सुनने के लिए आए थे, नाना पाटेकर और मनीषा कोइराला।
1: Laika Radio, feel good track, brought to you by Dairy Valley.
2: Soft and tender, like grandma's warm hug, Dairy Valley Paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit dairyvalley.net.

0: बेहद कम। साउथ हॉल ट्रेवल का दावा है कि 24 घंटे के भीतर कहीं से कम में ला के दिखाए तो ये रिफंड या डिफरेंस वापस कर देंगे। तो दुबई के लिए तैयार, यू डू द पैकिंग, दिल डू द प्लानिंग। कॉल साउथ हॉल ट्रेवल ऑन 020-8574-8410। दैट्स 8574-8410।
1: साउथ हॉल ट्रेवल, ऑटो प्रोटेक्टेड। बी पार्ट ऑफ अ हिस्टोरिक ग्रैंड ओपनिंग।
2: एक्सपीरियंस द न्यूली इनॉग्रेटेड BAPS स्वामीनारायण मंदिर इन पेरिस। अ वंस इन अ लाइफ टाइम spiritual journey.
1: Travel with your family and witness this divine occasion along with the Eiffel Tower, Seine River Cruise and a Paris City Tour.
2: Departure 5th of September. Call now on 0203-773-633.
1: Mantra Holidays. What's your travel mantra?

0: Mabster નું પાણીપુરી અને પાણીપુરી નો પાણી.
1: All Mabster products are nut free and made in Canada. Now available at your nearest Asian grocery store.
2: લેસ્ટરના લિટલ ગરબા સ્ટાર્સ તૈયાર થઈ જાઓ. KDR ઇવેન્ટ્સ એન્ડ બીચ પ્રમોશન પ્રાઉડલી પ્રેઝન્ટ્સ કિડ્સ ગરબા 2026 વિથ લાઈવ ફ્રોમ ઇન્ડિયા. સેટરડે 17th ઓક્ટોબર બપોરે 1-4 એટ અવંતી ફીલ્ડ સ્કૂલ લેસ્ટર. 1-10 વર્ષના કિડ્સ માટે એન્ટ્રી જસ્ટ £5. ટિકિટ્સ અવેલેબલ ફ્રોમ ટિકિટ સોર્સ ઓર કોલ બીચ 07957477330. મસ્તી, મ્યુઝિક અને ફુલ ઓન ગરબા ફન. રેડિયો પાર્ટનર લાઈકા રેડિયો.
3: Laika Gold, officially London's number one Asian retro music station. Available in Greater London on 10:35 AM, DAB Digital Radio, Alexa and LaikaGold.com.
4: Artist of the Week is brought to you by our new podcast, Laika Extra. Stream it now and be a part of the conversation.
5: And brother, brother, you know that Artist of the Week is who is it? That great individual. शारद पुत्री, कंठ कोकिला, वन एंड ओनली लता मंगेशकर. और वेल, लता जी का जन्मदिन पड़ता था उस साल, उनकी डेथ से पहले जो उनका जन्मदिन था, तो उन्हें एक फोन आया और फोन करने वाले ने कहा कि मैं विदेश में हूं लता जी, पर आपका जन्मदिन नहीं भूला हूं. मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे, जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई. कौन था ये व्यक्ति भाई जो विदेश जाकर भी उनको भूला नहीं? इतने जरूरी काम होते हैं उस इंसान के पास, और वो विदेश यात्रा पर था. वो थे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी. देखिए साहब, बड़े बड़े लोगों को तो मौका मिल जाता है लता जी से बात करने का, साक्षात करने का उन्हें, लेकिन इस छोटे से व्यक्ति को भी आज से 36 बरस पहले भरा भाइयों इंडियन हाई कमीशन की बिल्डिंग में एक कमरे में मैं और लता जी आमने सामने बैठे थे, और थोड़ी देर के लिए मैं नर्वस था, लेकिन उन्होंने ही हिम्मत बनाई और जब मैंने एक के बाद एक सवाल पूछे, लता मंगेशकर जी क्या कहूं, उनकी आवाज को, उनके अंदाज को, उनकी उपस्थिति को, उनकी पर्सनैलिटी को. और मैंने एक सवाल पूछा था कि लता जी जब आप मंच पर गाती हैं तो जैसे और कलाकार हैं वो परफॉर्म भी करते हैं, पर आप तो खड़ी रहती है, कभी कभी तो आप इतनी खो जाती हैं, आंखें बंद हो जाती हैं, जैसे आप गाने रही हैं, ध्यान कर रही हैं, पूजा कर रही हैं. तो लता जी ने कहा, बिल्कुल, मैं जब गाती हूं तो मेरे लिए वो पूजा के समान ही होता है. भाई मुझे याद है इंटरव्यू की एक एक बात, लेकिन उनकी आवाज में मैंने रिकॉर्डिंग ढूंढ कर निकाली है, कभी सुनवाएंगे. पर लता मंगेशकर भाई पूरे साजबाज के साथ स्टूडियो में गाती थी और बात है, लेकिन वो अकेली अपनी आवाज गुनगुनाए तो भी ऐसा लगता था कि पूरा एटमॉस्फेयर गा रहा है.

कोयल सी कूकती है, प्रकृति भी रुकती है, सारी दुनिया जिस स्वर के सामने झुकती है वो है लता मंगेशकर, रहेंगी हमेशा लता मंगेशकर। और बहनों भाइयों, लता जी की आवाज में तो आंख बंद करके आप किसी भी गाने पर टिक करें ना तो वो गाना जो है वो स्पेशल हो जाता है। अब इस गाने में उन्होंने सवाल पूछा है कि लोग प्यार करते हैं फिर आंसू बहाते हैं और कहते हैं कि कह दो जहां में कोई ना करे प्यार, ऐसा क्यों करते हैं? ये वो लड्डू है जिसे जो खाए वो पछताए, जो ना खाए वो ललचाए, जिसे कहते हैं मोहब्बत।

0: Feel Good Track, brought to you by Dairy Valley.
1: Soft and tender, like grandma's warm hug, Dairy Valley Paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit dairyvalley.net.
2: आर्टिस्ट ऑफ द वीक लता मंगेशकर. और बहनों भाइयों, इस पूरे सप्ताह में आप उनके गीत सुनते रहे और अभी तो सुनेंगे. अभी इस वीक के वीकेंड वाले दिन भी बाकी हैं. लता जी हैं आर्टिस्ट ऑफ द वीक और उनकी आवाज, उनका अंदाज भाई, उनका व्यक्तित्व अंकित है मेरे हृदय पर. हालांकि थोड़ी देर की मुलाकात थी, करीब घंटे भर से ज्यादा की जो इंटरव्यू मैंने उन्हें उनका किया था भारतीय हाई कमीशन में. और अब आगे बढ़ते हुए भाई, बहुत सारे मैसेजेस आ गए हैं और सब चिंतन की प्रशंसा में लिखे गए हैं. तरला मौर्जारिया जी, सुनीति जी और भाई जैस जी हिना, वेरी गुड आफ्टरनून टू यू. आपने तो गुड मॉर्निंग लिखा क्योंकि सुबह का आपका ये संदेश आया, ठंडा हो रहा था यहाँ पे. हिमांशु पटेल, हंसा वोरा, जैस्मीन, किशोर पांड्या, किशोर पान वाले, आनंद पान वाले कहते रवि जी थैंक यू वेरी मच, वंडरफुल प्रेजेंटेशन ऑफ बंटवारा. भाई इस टाइटल से अब तो फिल्म भी आ रही है और बहुत सारी जानकारी इतिहास में दर्ज है, लेकिन है दुखद ट्रेजिडी है. विजय गनोवा मॉरिशस से, वो कहते हैं भारत माता के इतिहास में सबसे बड़ा मनहूस दिन है पंडित जी, जिसे आप सेलिब्रेट करने की बात करें. भाई कुछ लोग कर रहे हैं सेलिब्रेट, नेचुरली स्वतंत्रता दिवस योम आज़ादी तो है, लेकिन उनकी भी यादों में वो दुखद घड़ियां अभी मिटी नहीं होंगी, लिखी गई होंगी. और आज का चिंतन बहुत पसंद किया. किरण, आपको पसंद आया, थैंक यू वेरी मच. जगदीश बुशी से थैंक यू वेरी मच, आपको भी चिंतन अच्छा लगा. रंजन न्यू, नाइस चिंतन रवि जी. अनिल सोनी वियाना में, आपको भी पसंद आया. भाई आज तो चिंतन के बारे में ही ज्यादा संदेश हैं. राम राम रवि भाई, वेरी नाइस, यू मेड मी क्राई, गॉड ब्लेस यू. बताओ, रोकर भी दुआ देते हैं. अशोक भसीन, क्या करें, वो घटनाएं ऐसी घटी भाई, वो दौर ही ऐसा था. सुनीता शर्मा, थैंक यू, आपका मैसेज मिला. विमल रायन जी, सो नाइस ऑफ यू. भरत गंगाराम, जहीर खान कराची से लिखते हैं, अस्सलाम वालेकुम भाई, वरहमतुल्ला, वालेकुम सलाम कहते हैं. सुपर्ब डे गुरु रवि शर्मा जी, क्योंकि हम यहाँ सेलिब्रेट कर रहे हैं, लेकिन आपका चिंतन भी बहुत अच्छा लगा. आज़ादी की उस मुबारकबाद के लिए आपका शुक्रिया, और वो जानकारी जो आपने दी है चिंतन में, उसके लिए भी आपका बहुत बहुत शुक्रिया. थैंक यू जहीर भाई, उल्लास टोरंटो में सुन रहे हैं. शेखर भाई कहते हैं, क्या बात है, आज का चिंतन सुना, दिल दहल गया. हाँ भाई, हिला देता है वो घटनाएं, भले ही हमने देखी नहीं है, लेकिन सुनते हैं तो आंखों के सामने वो तस्वीर उभरने लगती है. थैंक यू शेखर जी. रानी स्लो वाली, अर्जुन जी, वजीर, सलाम रवि भाई, विशिंग ऑल पाकिस्तानी हैप्पी इंडिपेंडेंस डे. थैंक यू भाई, वजीर भाई, आप सब की ओर से मुबारकबाद पहुंच गई. प्रदीप सोलंकी, प्रकाश असूतर, निर्मला भारती, महेंद्र बरचारिया हैरो में, पम्मी सिंह स्लाव में, और ये कौन है भाई, ये छोरा तो हरियाणा का लाग है, पवन गनोरी छोरे रहे, कहता शर्मा जी आज मेरी गाड़ी में फूल फूल भरे हैं, तो फिर देख के किया खागड़ प्रसादी. अच्छा अभी रख बचा के, प्रोग्राम खत्म होने लगा ना, फिर तेरे फूला का जिक्र करेंगे. पर पवन जुड़े रहा करो भाई, आपका सफर आसान हो जाएगा. ये तो बड़ा ट्रक चलाते हैं भाई पवन, और चलाते हुए गाना सुनते रहते हैं, प्रोग्राम सुनते रहते हैं. और ये याद दिला रहे, कहते हैं कल भारत की स्वतंत्रता का दिवस है, याद करो ना शहीदों को. देखिए वो अपने भगत सिंह जी, आपको पता वो एक राइटर भी थे, उन्होंने एक शेर लिखा और शेर में लिखते हैं, इस कदर वाकिफ हो गई है मेरी कलम मेरे किरदार से, इश्क भी लिखता हूं तो इनकलाब लिखा जाता है.
3: मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे, ओ मेरा रंग दे बसंती चोला, ओए रंग दे बसंती.
2: इस कदर वाकिफ हो गई है मेरी कलम मेरे किरदार से, इश्क भी लिखता हूँ तो इनकलाब लिखा जाता है.

0: मुकेश महेंद्र कपूर और साथियों की आवाजों में सुना आपने ये गीत।
1: Feel good track brought to you by Dairy Valley.
2: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, motichur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
0: भाई अगले दिनों में हमारे कुछ कार्यक्रम मतलब हम जिनके साथ सहयोग कर रहे हैं तो भाई हमारे प्रोग्राम हुए जी जान लड़ा देते हैं हम किसी भी प्रोग्राम को कामयाब बनवाने में। तो एक तो कविता कृष्णमूर्ति जी का लाइव परफॉर्मेंस जो है उनकी हो रही है, शो आ रहा है उनका, लेजेंड कविता कृष्णमूर्ति परफॉर्म्स लाइव एट द रॉयल एल्बर्ट हॉल ऑन संडे 1st नवंबर, ब्रॉट टू यू बाय सनातन इवेंट्स एज ए दिवाली स्पेशल। टिकट्स फ्रॉम द वेन्यू बॉक्स ऑफिस, एक्सक्लूसिव रेडियो पार्टनर ऑफ कोर्स लाइका रेडियो नेटवर्क। इसके अलावा भाई अपने वो सुनील ग्रोवर, क्या बात है भाई इस नौजवान की, क्या प्रेजेंटेशन है, क्या अदाएं हैं। एक तो भाई परफेक्ट मेकअप, परफेक्ट संवाद, आवाज, डिलीवरी, कैच द कॉमेडी जीनियस सुनील ग्रोवर लाइव इन लंदन एट ओवो अरीना वेम्बली ऑन थर्सडे 29th अक्टूबर एंड लेस्टर एट मेटोली अरीना ऑन सैटरडे 31st अक्टूबर। टिकट्स एट AXS, इवेंट ब्राइट एंड टिकट मास्टर, एक्सक्लूसिव रेडियो पार्टनर ऑफ कोर्स, वी आर द एक्सक्लूसिव रेडियो पार्टनर रायका रेडियो नेटवर्क। और भाई सुनील ग्रोवर के बारे में याद दिला दूं, कहीं बाद में कोई और क्लेम ना कर ले, ही इज हरियाणवी सिरसा से है भाई। सुनील ग्रोवर जो है कितने रूप, कितनी अंदाज, कितनी तरह की आवाजें निकालते हैं, तो डॉक्टर मशहूर गुलाटी जरूर मिलिएगा।
1: ये है लाइका रेडियो।
3: This super hit song is proudly sponsored by Tilda Basmati Rice. Discover the serious delicious possibilities with Tilda.
0: भाई मेरा रंग दे बसंती चोला गीत सुनवाकर हमने एडवांस में बधाई दे दिया भारतवंशियों को भी। ठीक सा भाई पवन इसने काम चला ले और पवन शर्मा भी सबको भारतीय स्वतंत्रता दिवस की बधाई दे रहे हैं एडवांस में। और ये गीत होगी तो होगी अच्छे निभाले। मेरी माँ इस गीत को सुनती है और फिर मुझे पूछती है ये क्या कह रही है, मैंने कहा माँ कह रही है, कहती क्यों ये घर में मिलके नहीं रह सकती, कहती है न्यारी होंगी न्यारी होंगी न्यारी होंगी

0: कमल रात मैं हूँ भाई। मैंने आज जॉनी लीवर को याद नहीं किया, अपने दोस्त, अपने प्यारे मित्र, अपने न्यारे कॉमेडियन भाई जॉनी लीवर आज अपना जन्मदिन मना रहे हैं। मेनी मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे टू हिम। लीना वाडिया ब्रिटिश एक्ट्रेस भाई, उनका भी जन्मदिन है आज।
1: हीरे आँख दी जोगिया झूठ बोले,
0: ये दूसरी दीना वाडिया भाई, ये तो वो लगता है कि डॉटर ऑफ द फाउंडर ऑफ पाकिस्तान। हाँ, दो हैं दीना वाडिया, ये वो एक्ट्रेस नहीं है भाई। लंदन में पैदा हुई थी, डॉटर ऑफ बाबा कौम पाकिस्तान के, मोहम्मद अली जिन्ना की बेटी दीना वाडिया। बड़ी विद्रोही किस्म की उसकी हैबिट्स थी भाई।

What a song, what a song. And I am actually so excited today because doing a tribute of one of the greatest names of Bollywood, especially after having met him, not once, not twice, but a few times, and sitting in front of him and doing a Ghoda Gaadi medley on a table. It was just we had no musicians or no instruments with us, and he was a chief guest. Inki ek zameen thi Pune mein, inhone bechi ye zameen, aur jinko bechi thi wo mera dost tha. To he built a hotel us zameen pe, to uski opening pe mujhe bulaya, lekin usne kaha nahi ke Shami ji will be the chief guest there. He said, Bali, mera opening hai hotel ka. Bollywood ya aisa kuch, Boulevard aisa kuch naam rakha tha. So he did the opening. Aur hum jab pahunche wahan pe, to maine dekha Shami ji aur Randhir Kapoor ji dono the wahan pe. He was in a wheelchair. And they said, Bali is... a singer. He says, haan haan, mila hoon isko main. Bala Saab Thakre ke saath wo stage pe jab ga raha tha, to main audience mein tha. Aur phir dusri baar inhunne ek aur baar bhi mujhe mile the. Lekin yahaan pe unhunne kaha ke, Bali kuch suna. Wo jo host the, unhunne kaha. Maine kaha, yaar, na tayyari na kuch bhi, aise hi aapne bol diya. To maine kaha ke okay, mujhe 20 minute de do. Phir main chala gaya wahan se, aur 20 minute ke baad main wapas aaya aur maine kaha ke instruments koi nahi hai to hum aise table pe bajayenge. Lekin humne puri Shammi Kapoor ki Ghoda Gaadi medley humne shuru kar di, jaise ke Tum Sa Nahi Dekha, phir Savere Wali Gaadi se chale jayenge, usme दूसरे घोड़ा वाले जितने गाने थे घोड़ा गाड़ी वाले, सो वो सब इकट्ठा करके हमने एक मेडली बनाई. एंड देन आई सैंग दैट एंड ही वाज सो सो हैप्पी, बिलीव यू मी, बिकॉज ही सेड के जिसने कोई तैयारी ना की हो, ना कोई म्यूजिशियंस है, और इसने वैसे ही एक्स टेम्पो कर दिया. तो तब से बड़ी अच्छी दोस्ती रही. एंड शशि कपूर जी के साथ भी ऐसी दोस्ती थी. जब मैं इनके फ्यूनरल पे गया उनके घर पे, आई सॉ द बॉडी लाइंग देयर, आई कुडंट बिलीव दैट्स द सेम मैन हु हैज एंटरटेन मिलियंस विद हिज एल्विस प्रेस्ली स्टाइल डांसिंग एंड हिज एक्टिंग एंड हिट फिल्म्स. चलो इनको याद करते हैं आज. इट्स अ प्लेजर. इट्स हिज 15th डेथ एनिवर्सरी. Born on 21st October 1931 in Bombay. Born in Bombay and died in Mumbai, 14th August 2011. Also known as Elvis Presley of India. जी हाँ. चलो हम ये सब बातें नहीं करेंगे. इनके पिताजी कौन हैं, इनके भाई कौन हैं, आप सब

रफी साहब को सुनकर फॉर शम्मी कपूर ऐसे लगता है कि जान में जान आई. फील सो गुड डोंट वी. एंड दूसरी फिल्म है दिल देके देखो, नासिर हुसैन की, आफ्टर तुमसे अच्छा कौन है, द सेकेंड हिट ऑफ शम्मी कपूर. एंड ये गाना बड़ा पॉपुलर हुआ आशा भोसले एंड मोहम्मद रफी साहब का. दिल देखे देखो, द सेकेंड हिट ऑफ शम्मी कपूर 1959, द न्यू डांसिंग हीरो दैट इमर्ज्ड ऑनटू द बिग स्क्रीन्स. Laika Gold doing a tribute on the 15th death anniversary of Shammi Kapoor.

0: करके शादी करके फंस गया यार।
1: इसमें मेरी आवाज है, शंकर महादेवन जी की आवाज है, और तीसरे सिंगर जिनका नाम मैंने बताया नहीं था, एंड दैट वाज, डू यू नो हु? I'll keep you in suspense. We're wishing Johnny Lever Sahab happy birthday today from Like a Gold.

0: इनके डैडी को मैंने कहा, साहेब जी ये बड़ा नाम कमाएगी और बहुत बड़ी बनेगी, क्योंकि इसको एक सुर से इतना फर्क पड़ जाता है, इतनी कंसर्न्ड है एट दिस यंग एज. सो सुनिधि चौहान, आई स्टिल रिमेम्बर दैट पर्टिकुलर शो इन हांगकांग, एंड आज की तारीख में जैसी बुलंदी पे वो है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है ये सोचकर कि आई वॉज राइट व्हेन आई सेड शी इज गोना बी अ बिग नेम. Not because I said it, but iski takdeer aisi, lekin I sussed it out right. Next birthday we're gonna remember is none other than quite a good name, Moinish Bahel. Moinish Bahel is the son of Nutanji, and he is 64 years old, that's right. 14th of August 1961, Moinish Bahel. And uska ek gana maine chuna hai, bada pyara gana hai. He did his debut in the film Bekarar, I think. Yes, 1983 ki film thi. Support role opposite Padmini Kolhapuri, she did. And not only that, he did some negative roles. Kya kya negative roles inhone nibhaye. Ooh la la. He was Maine Pyar Kiya Mein. He was by the name of Jeevan. Haan, I distinctly remember. Ek dialogue tha. Ek ladka aur ek ladki kabhi dost nahi hote. Wo dialogue bada popular raha. And then he got the breakthrough, of course, in Maine Pyar Kiya. Hum saath saath hain. हम आपके हैं कौन. एंड देन दूसरी फिल्म में जैसा अंडहान नेगेटिव किया था, एक रिश्ता 2001 की, जिसमें नरेंद्रा बने थे. एक फिल्म में उसका नाम बाली था शोला और शबनम, जिसमें नेगेटिव रोल किया था. अमित वाज अ नेम दैट ही यूज्ड इन सबसे बड़ा खिलाड़ी. एंड देन एक इंस्पेक्टर बने हुए थे कहो ना प्यार है में, वो भी नेगेटिव रोल था. एंड देन मेजर प्रताप सिंह, प्यार जिंदगी है एक फिल्म थी जिसमें ही बिकम्स अ मेजर प्रताप सिंह फ्रॉम द आर्मी, एंड राजेश खन्ना वाज हिज फादर इन लॉ, एंड ही गेट्स मैरिड टू राजेश खन्नाज डॉटर, एंड ही मर्डर्स हर बिकॉज ही वाज क्रेजी अबाउट द यंगर डॉटर. आशिमा भल्ला वॉज द हीरोइन. Why I know so much? Because I gave the music of that film, Pyar Zindagi Hai. Wahan pe Moinish aur Rajesh Khanna, hum sab milte the, bada maza aata tha. I got some very good response from them when I did the music of Pyar Zindagi Hai. Kesi Bokaria ji ki film thi wo. Suniyega kabhi, agar chance mila to aapko, wo film Pyar Zindagi Hai. मैं हूं बाली ब्रह्मभट विद गोल्ड आफ्टरनून्स विद द शो स्पॉन्सर्ड बाय जैमिन.
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: Your £1 in British sterling can fetch you up to 128.65 Indian rupees. Don't forget to exchange in branch, online or SBI YONO mobile app. TNCs apply.
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply. Get all the latest travel updates for the Midlands at Breakfast and Drive.
2: We hit
3: Leica Radio.
2: Gold Afternoons is sponsored by Jaimin Foods, the authentic taste of India. From classic snacks to new flavors, find your favorites at your nearest Asian store.
4: This part of the show is brought to you by Dhurandhar.
5: Ladies and gentlemen, you are not ready for this.
4: Mega blockbuster Dhurandhar on Star Gold, 15th and 16th of August at 9 p.m.
6: Leicester, तैयार हो जाओ एक यादगार बॉलीवुड नाइट के लिए. Jay's Entertainment presents Bollywood Legend live in concert featuring Bollywood actor Sanjay Kapoor, playback singer Aman Trika और female singer Mayuri Patalia. Sunday, 27th of September, De Montfort Hall.

0: Leicester. Doors open 6:30 p.m. Show starts 7 p.m. Tickets book kare demotfordhall.co.uk
1: ya Mumbai Sandwich Station on 0116-332-0262 or call Mr. B on 07860-280-655. Exclusive radio partner, Laika Radio.
2: History divided a nation but could never divide humanity.
3: Kaun si azadi aur kiska mulk?
2: Witness the epic reunion of Sunny Deol and Rajkumar Santoshi in Batwara 1947.
4: Wo maa hai maa. माँ को हिंदू मुसलमान में ना बांटिए.
2: स्टारिंग शबाना आजमी, प्रीति जिंटा, करण डियोल एंड अली फजल.
4: हर बच्चे के मुंह से निकला पहला लफ्ज माँ है.
2: प्रोड्यूस्ड बाय आमिर खान. एक्सपीरियंस द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ करेज एंड होप. बटवारा 1947 नाउ इन सिनेमाज़.

0: जिंदगी।
1: लिसन टू लाइका गोल टू गोल टू ऑन लाइका रेडियो मोबाइल ऐप लाइका रेडियो डॉट कॉम एंड एलेक्सा प्ले लाइका गोल टू गोल टू।
2: When you go abroad, everyone knows the best way to make yourself understood is to say everything in English, but louder.
3: Four beers, please, garçon!
2: Just like when you amplify your advertising with radio. 40 million listeners every week get the message. See radio differently at radiocentre.org.
1: Yeah, like a go.

0: to Leica Gold 2 on Leica Radio mobile app, leicaradio.com and Alexa. Play Leica Gold 2.
1: बहुत पढ़ाई किया है ना तूने, तो एक सवाल का जवाब दे।
2: पूछ लो सर।
1: साल के कितने महीने में 28 दिन होते हैं?
2: फरवरी सर।
3: सर, साल के हर महीने में 28 दिन होते हैं।
4: इंडिया के टॉप 1% स्टार्ट्स दिस सितंबर ऑन स्टार प्लस।
1: इंडिया के टॉप 1% सिर्फ डिग्री नहीं दिमाग भी जीतेगा।
4: हाय इट्स मी राज बैडन, कैच मी एवरी वीक आफ्टरनून विद माय चॉइस एक्टिव, फिल्मी स्क्रैम्बल, अ लिरिकल मिरेकल एंड द बिग क्वेश्चन। दैट्स 4 PM ऑन लाइका रेडियो ग्रेटर लंदन एंड लाइका रेडियो मिडलैंड्स।

0: this weekend at Abbey Park Leicester. Tickets at leicestermela.co.uk.
1: भोजपुरी बवाल।
2: पवन जी, मैंने सुना है आप दोनों के रिलेशंस अच्छे नहीं है।
3: आप सीधे सीधे आरोप लगा रही हो।
4: कहां से ही झगड़ा चला था भाई।
1: द ब्रांड न्यू रियलिटी टीवी शो भोजपुरी बवाल, मंडे टू संडे एट 10 PM ऑन कलर्स टीवी।
0: बॉलीवुड्स बिगेस्ट 90s सॉन्ग्स नॉन

0: Now visit starters.co.uk or call 0208-900-2323.
1: भारत या पाकिस्तान जाने की सोच रहे हैं तो एयर टिकट साउथ हॉल ट्रेवल से खरीदिए।
2: मगर साउथ हॉल ट्रेवल से ही क्यों?
1: क्योंकि उनसे ज्यादा सस्ती टिकटें कहीं नहीं मिलेंगी।
2: गारंटेड
1: बुकिंग करवाएं और उसके बाद 24 घंटों के भीतर कहीं से भी सस्ती ला के दिखाएं तो ये फुल रिफंड या प्राइस डिफरेंस वापस कर देंगे। साउथ हॉल ट्रेवल
2: फोन 0208574-8410।
1: 24 घंटे किसी भी वक्त फोन करें 0208574-8410। एट ऑल प्रोटेक्टेड।
3: Weddings, celebrations, corporate events. At Ragasan, we take care of everything from sourcing the perfect location, designing incredible themes, and creating world-class cuisines and managing every detail through to the finish. With over 30 years of experience, we specialize in delivering truly exceptional class events. Call us on 020-8839-0880 and visit ragasan.com to begin your journey. Ragasan, locate, design, manage, cater.

0: वेडिंग सेलिब्रेशंस, कॉर्पोरेट इवेंट्स, रागसन सब कुछ एफिशिएंटली हैंडल करते हैं। परफेक्ट लोकेशन ढूंढने से लेकर इनक्रेडिबल थीम्स डिजाइन करने तक, वर्ल्ड क्लास कुजीन से हर छोटी बड़ी रिक्वायरमेंट तक मैनेज करते हैं। 30 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस हर इवेंट को खास बनाए। फौरन का फोन मिलाए 0208839080 और विजिट ragasan.com। लोकेशन, डिजाइन, मैनेजमेंट या केटरिंग, रागासन।
1: दर्द से पुराना रिश्ता है मेरा।
2: The wait is over. Imran Hashmi returns in the next chapter of a cult classic, Awwarapan 2.
1: उसने मुझे छुआ, पर अपना आया नहीं। तो फिर
2: Now in cinemas. For your nearest cinema listings, visit Bakronia Media on Instagram.
3: Have you noticed the way fans shout at football matches?
4: Oh, wake up!
3: That's because conveying your message with sound is the most effective way to communicate to the players on the pitch that they're rubbish. And this works in advertising too. You see, research shows how brands that use radio to amplify their advertising are 49% more likely to get noticed. See radio differently at radiocentre.org.
5: When you notice something wrong, it tends to grow and eventually take over, to the point you can't really think of anything else. If something in your body doesn't feel right, the thought it could be cancer can play on your mind. Tests could put your mind at rest. Finding out sooner is always better. Your NHS wants to see you. Contact your GP practice.
6: आपका नया स्टेशन लाइका रेडियो गजल्स बहुत जल्द आ रहा है।
7: Like a radio.
8: Pay close attention and name the film of this cracker classic.

होगा दिल तेरा लेके ही तो लिख बेबी किसी से भी पूछ लौंडा टू मच है बोली में थोड़ा रियान भी टच है जितने भी रूमर सुने तूने अपनी सहेलियों से मेरे बारे में वो सारे सच है बेबी मैं हूँ वो जिसके बारे में चेतावनी देती होगी तुझे तेरी माँ बी ए डी शाह नाम बदल दियो मेरा बेबी जो ना कर रहा थी तेरी ना

0: कुछ लोगों की कहानियाँ उनकी मर्जी से खत्म नहीं होती.
1: A story of love, redemption and second chances returns to the big screen.
0: दर्द से पुराना रिश्ता है मेरा.
1: इमरान हाशमी is back in the much awaited sequel, Awarapan 2.
0: इस बार या तो ये आवारापन खत्म होगा या मैं.
2: तो फिर
1: witness powerful emotions, breathtaking action and a soundtrack that stays with you long after the credits roll. Now in cinemas. For your nearest cinema listings, visit Vikronia Media on Instagram.
3: Imagine turning your next cake box order into a magical family adventure. This August, every online cake box order is automatically entered into our prize draw to win a family trip for four people to Disneyland Paris. So celebrate birthdays, special moments and summer memories with Cake Box. And you could be celebrating in Disneyland too. Order online this August at cakebox.com. Cake Box. Celebrate today and make memories forever. T&Cs apply.
4: साउथ हॉल ट्रेवल की एक और ऊंची उड़ान देखिए. दुबई की शान, फ्लाइट, होटल, साइट सींग, डेजर्ट सफारी, यानी दुबई में सारा इंतजाम और पैकेज की प्राइस बेहद कम. साउथ हॉल ट्रेवल का दावा है कि 24 घंटे के भीतर कहीं से कम में लाके दिखाएं तो ये रिफंड या डिफरेंस वापस कर देंगे. तो दुबई के लिए तैयार, यू डू द पैकिंग, दिल डू द प्लानिंग. कॉल साउथ हॉल ट्रेवल ऑन 020-8574-8410. दैट्स 8574-8410. साफो ट्रेवल, ऑटो प्रोटेक्टेड.
5: सफर नया पर साथी वही, आपके दिल के है जो करीब, कहानी वही, जो दिल में बसा था वही नाम लाए हैं, अपनों को अपनों के करीब लाए हैं.
6: आपका अपना उत्सव प्लस अब है स्टार प्लस.
7: स्काई चैनल 705, वर्जिन मीडिया 803 एंड EE392.
8: लाइक अ रेडियो नेटवर्क, प्राउड हॉस्पिटैलिटी पार्टनर, रगासन.
9: Cutthroat Ke Khiladi, Saturday and Sunday at 8 PM on Colors TV. Powered by Star Tours, associate sponsor Lioncroft.
10: Cutthroat Ke Khiladi.
11: You're both on the same road, same tarmac, same rules, just a different number of wheels. Motorbikes aren't in your way, they're on their way, just like you. So use your mirrors, check before you maneuver, and be aware of motorbikes. Because when we look out for each other, everyone gets where they're going safely. Motorbike safety. It's on all of us. National Highways.
12: It's a dog walk. I do it every day at home. I don't need to plan it. Check the tide. Check my phone. Why do I need to take my...
13: Here, boy!
14: Coast Guard, we're stuck.
15: Okay, help's on its way.
16: Hold on, mate.
17: Shoes, tied, phone.
18: Back before dark, love. Okay.
19: In an emergency at the coast, call 999 and ask for the Coast Guard. And please, respect the water.
8: Easing you through the night with the Midlands' biggest Asian hits on Leica Radio.

ये अपनी किस्मत स्लो ट्रैक से फास्ट ट्रैक लाने में निकाल देता है, पर ढाई घंटे में मेरी किस्मत ऐसे स्लो ट्रैक से फास्ट ट्रैक पर आ जाएगी, ये मैंने कभी सोचा नहीं था। सजा मजा बन जाएगी, ये भी कभी सोचा नहीं था।

0: लाइका रेडियो पंजाबी, लाइका रेडियो मोबाइल ऐप ते, likeareadio.com ते एलेक्सा प्ले लाइका रेडियो पंजाबी पंजाबी. Download the Laika Radio mobile app. Listen live and listen back to your favorite shows. This is the Laika Radio Network, broadcasting across the UK.
1: अपने बिजनेस को UK के लार्जेस्ट एशियन कमर्शियल रेडियो नेटवर्क पर एडवर्टाइज करने के लिए कॉल करें Laika Radio Sales on 0116-471-0697 या ईमेल करें sales@laikamedia.co.uk.
0: Bollywood romantic hits throughout the night.

0: लाइका रेडियो
1: साउथ हॉल ट्रेवल की एक और ऊंची उड़ान देखिए दुबई की शान, फ्लाइट, होटल, साइट सींग, डेजर्ट सफारी, यानी दुबई में सारा इंतजाम और पैकेज की प्राइस बेहद कम। साउथ हॉल ट्रेवल का दावा है कि 24 घंटे के भीतर कहीं से कम में ला के दिखाएं तो ये रिफंड या डिफरेंस वापस कर देंगे। तो दुबई के लिए तैयार, यू डू द पैकिंग, दिल डू द प्लानिंग। कॉल साउथ हॉल ट्रेवल ऑन 020-8574-8410, दैट्स 8574-8410।
2: साउथ हॉल ट्रेवल at all protected.
3: Celebrate Diwali at the iconic Royal Albert Hall.
4: Join legendary singer Kavita Krishna Murthy
3: live on Sunday the 1st of November. An unforgettable evening of spectacular Bollywood and devotional songs
4: with the Royal Philharmonic Concert Orchestra.
3: Get your tickets from royalalberthall.com and sanathanevents.org. Brought to you by Sanathan Events.
4: Exclusive radio partner, Laika Radio Network.
5: Durandar, 15th and 16th of August at 9 PM on Star Gold. Title sponsor, Watchdog Security. Associate sponsor, Lemfi.